0: gebo na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li no le chang chang jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe de yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जी तेला जीप सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यू से के जो लंका का मांस दे जिना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो बजो जो जी टा मुन्यो जो संग तांगा मोटा तो तो मटा ताते ले गेम गे ने चिप जो लंका बी पेंडो रे
0: जे जे तांगा ह गिन ग क शाम ब त कि छि इन जो ति मुन्ये ला सान जो रे और जे जे
1: लंका क्यों तो तो आ ने छाय
2: या
0: बस ते जो ना से पिन जे जो कोयो कोया पोता
2: कोयो ला
3: 把做进步没有危机，层面解决难困难，马上的也不用。这句难不毛那样，爹娘这句啥话意？这句难句用了土，可得牛子千里过地没动啊当，可得进前路了没动啊，出了多年可得没动啊，可得动个。
4: 参谋机下去，搁清楚嘞。最近两次，真正这次来送子去年，罗拉的亚当亚人修造了地面，罗拉下都用下去，给你写的。人家的地面，这有可有解，推木头。